0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: कभी कभी जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, लेकिन दिल वहीं अटका रहता है जहां हमारा बचपन बीता था। वो पुराना घर जिसकी दीवारें शायद अब बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन उनमें छुपी यादें आज भी जवान हैं। वो आंगन याद आता है जहाँ बिना किसी चिंता के घंटों खेला करते थे। वो छत याद आती है जहाँ गर्मियों की रातों में तारों को गिनते गिनते नींद आ जाती थी। वो दरवाज़ा याद आता है जिस पर खड़े होकर स्कूल से लौटते ही जोर से आवाज़ लगा देते, माँ भाई आ गया। उस घर में शायद ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सुकून बहुत था। कमरे छोटे थे मगर रिश्ते बहुत बड़े थे। आज हम बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन उस छोटे घर जैसी खुशी कहीं नहीं मिलती। क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है हंसी से, प्यार से और उन लोगों से जो घर बनाते हैं। आज भी जब उस घर की याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही रह गया हो। बचपन का घर शायद पीछे छूट जाता है, लेकिन उसकी यादें उम्र भर हमारे साथ चलती है। क्योंकि कुछ पते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ घर हमेशा दिल में रह जाते हैं।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, यू आर लिस्टिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और हेल्दी टिप्स पे हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से है जो सुबह उठते ही यार कहते हैं बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ा और सो लेता हूँ। और मजेदार बात यह है कि कभी कभी थकान ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों की वजह से भी होती है। सबसे पहला रीजन होता है कम या खराब नींद। अगर आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो तो बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाती। दूसरा रीजन पता है क्या है? पानी कम पीना। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी एकदम थकावटी फील करती है और एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। तीसरा रीजन है मोबाइल और स्क्रीन का ओवरडोज। रात तक स्क्रॉलिंग और वीडियो देखना दिमाग को रेस्ट नहीं लेने देता। बॉडी बेड पर होती है लेकिन माइंड अभी भी ऑनलाइन होता है। और कभी कभी थकान का कनेक्शन खाने से भी होता है। ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना या पूरा दिन एक ही जगह बैठते काम करना, ये सब कुछ ना तो आपको थका सकते हैं। तो अगर आपको हर वक्त थकान महसूस होती है तो एक बार अपनी लाइफस्टाइल को जरूर देखिए। शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी मेडिसिन में नहीं बल्कि आपकी डेली रूटीन में हो सकता है। और अगर थकान लंबे समय तक बनी रहे या बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ना भूले। याद रखिए, कभी कभी बॉडी थकती नहीं, वो बस हमें सिग्नल देती है कि अब अपना ख्याल रखो, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए।

0: खबर।
1: मेंटल हेल्थ वेल्थ तो जिंदगी ऑल इज वेल, इसी बात को लेकर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो उसके बात करने के तरीके में, रहन सहन में कुछ बदलाव आते हैं क्या?
2: आ सकते हैं, और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना माइनर लेवल पे आते हैं तो वो सेल्फ या अदर्स वो नोटिस भी नहीं कर सकते, पर जो बदलाव आते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सिम्टम्स क्या है, कि जैसे नींद बढ़ना या घटना, भूख बढ़ना या घटना, कभी कभी रोना आ जाना, है ना, क्योंकि उदासी है और परसिस्टेंट उदासी है तो खाली लगना, रोना आना, ये कुछ चीजें, और डिसीजन ना ले पाना, ये कुछ चीजें हैं। बट इन एडिशन कभी कभी ना हाइजीन पे भी चीजें आ जाती हैं कि उस व्यक्ति को ऐसे लगता है, बड़ा थका हुआ फील होता है, जैसे हम बोलते हैं फटीक, जैसे शरीर में भारीपन आ जाना। अब शरीर जब हमारा भारी हो जाता है तब हमें बेड से उठने का ही मन नहीं करता। अब जब बेड से उठने का ही मन नहीं करता तो फिर न ब्रश करने का मन होगा, न नहाने का मन होगा, पढ़ने का मन होगा, न बात करने का मन होगा, न काम पे जाने का मन होगा, और फिर वो आदमी अकेला ही रहना चाहेगा, बिकॉज उनके लिए बात करना भी बहुत उनके लिए ना थकावट वाली चीज हो जाएगी। तो वो व्यक्ति अकेले अकेले गुमसुम आइसोलेशन में भी रहने लग जाते हैं।
1: सो ये सभी बात याद रखिएगा और आपकी मेंटल हेल्थ को वेल कीजिएगा। बाकी आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो हमें DM कीजिए 9359320080 इस WhatsApp नंबर पर। जल्दी करे, देर मत करे और सुनते रहे।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा काम है। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है।
1: All is well, RJ अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन MGM 90.8 FM। आज गाने की फरमाइश आई है अक्षय देशमुख की तरफ से इस गाने के लिए।

क्या बात है यार, सागर जैसी आंखों वाली, बेहतरीन सा, बढ़िया सा, रोमांटिक सा गाना है, अक्षय ने फरमाइश की है। तो चलिए फिर अक्षय की फरमाइश पूरी करते हैं। आणि हो, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर तुम्ही मला व्हाट्सअप करून कळू शकता 9359320080 या व्हाट्सअप नंबर वर। नंबर पुन्हा एकदा ऐका 9359320080। आपकी जो कुछ फरमाइश हो पूरी कीजिएगा और फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर हिट गाना अक्षय जी की फरमाइश पर। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MTM 90.8 FM।

अस्पताल में ऐसा होता है कि उन्हीं के मेडिकल के ऊपर से आपको मेडिसिन खरीदना होता है और ये कंपलसरी होता है, आप बाहर से मेडिसिन ला नहीं सकते। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और ऐसा ये रूल ना तो बहुत सारे अस्पताल में हमें दिखाई देता है, एंड फिर उस मेडिकल में कुछ दवाइयां बहुत महंगी होती है जो कि बाहर के मेडिकल में सस्ती मिलती है, बट ये सब कुछ आप बंद होने वाला है। बिकाराम मुंडे जो कि आयुक्त है अन्न यानी औषध प्रशासन विभाग के, तो उन्होंने एक नियम निकाला है, नियमानुसार बंधनकारक नहीं है कि तुम्ही ज्या हॉस्पिटल मध्ये ट्रीटमेंट घेताय त्याच हॉस्पिटलच्या मेडिकल मधून औषधी खरेदी करण्याचं, हे नियमात नाहीये। पेशंट जर बाहेरून औषधी आणणार असेल तर तो त्याचा अधिकार आहे, पण रुग्णालय एखाद्या ठराविक मेडिकल मधूनच मेडिसिन घ्या असं सांगू शकत नाही। रुग्णालय प्रिस्क्रिप्शन देतील पण औषधे कुठून आणायचं हे पेशंट ठरवतील, असा हा आदेश आहे जो की तुकाराम मुंडे यांनी काढलेला आहे। आणि खरंच हा खूप महत्वाचा आदेश त्यांनी काढलाय। अनेक हॉस्पिटल आपण बघितले की ते कंपल्सरी सांगतात की तुम्ही आमच्या मेडिकल मधूनच औषधी घ्या, बाहेरून आणू नका, आम्ही ते स्वीकारणार नाही। सो दॅट्स कॉल ऑफ बिझनेस, अब वो बंद होने वाला है, क्योंकि मेडिसिन कहां से लेना है और किस मेडिकल से लेना है ये पेशंट की जिम्मेदारी है। तर मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि ऐकत रहा।

0: कुछ दिन पहले लग रहा था कि मॉनसून फुल स्पीड में अपने महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश ने थोड़ा ब्रेक ले लिया है। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM और इसी वजह से महाराष्ट्र में ना तो कई जगहों पर उम्मीद से कम बारिश हुई है इस जून महीने के अंदर, लगभग नहीं के बराबरी हुई है। और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे किसानों पर तो हो रहा है। और एक्सपर्ट के मुताबिक समुन्द्र में नमी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हवाओं का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है और इसी वजह से मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीरे हो गई है, धीमी पड़ गई है। मतलब मॉनसून महाराष्ट्र के दरवाजे तक तो पहुंच गया, बस अंदर आने से पहले थोड़ा सोच रहा है। एंड रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पूरे इंडिया में 64% बरसात कम हुई है जून मंथ में, और अपने महाराष्ट्र में 69% बरसात कम हुई है जून मंथ में। और कहा जा रहा है कि 18 से 20 जून के दरमियान थोड़ा बहुत दिलासा मिलने वाला है और 20 जून के बाद अच्छी खासी ठीक ठाक बरसात शुरू हो सकती है अपने महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में। अब देखा जाएगा 20 जून के बाद ही क्या होगा, बस हमें इंतजार है अभी अच्छे खासे मॉनसून का। आई होप कि इस साल बरसात अच्छी हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। स्टे ट्यून्ड।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. BTech integrated 6 years after SSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Sciences and Engineering, Data Science, Robotics and Artificial Intelligence, Civil Engineering. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus in 6th Road, Chhatrapati Sambhajinagar.

गाड़ी चलाते वक्त आपको लगता होगा कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, टेक्नोलॉजी की नजर आपके ऊपर एकदम बारीक है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और अपने छत्रपति संभाजी नगर में RTO के नए AI बेस्ड इंटरसेप्टर व्हीकल ने सिर्फ 3 महीने के अंदर तकरीबन 3000 से भी ज्यादा गाड़ियां पकड़ ली है। और सबसे ज्यादा एक्शन किस पर हुआ है, यू नो व्हाट, 4-व्हीलर पर नहीं बल्कि 2-व्हीलर पर एक्शन हुआ है। अब ये इंटरसेप्टर गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं होती, ये 500 मीटर दूर से ही आपकी गाड़ी को देख लेती है, नंबर प्लेट रीड कर लेती है, आपने हेलमेट या सीट बेल्ट यूज किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो आपकी फोटो क्लिक होती है और आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है 500 मीटर दूर से ही। मतलब पहले घर वाले कहते थे बेटा संभल कर गाड़ी चलाना और हम इग्नोर कर देते थे, अब टेक्नोलॉजी कह रही है बेटा संभल कर गाड़ी चलाना, अगर इग्नोर किया तो सीधा चलान। वैसे भी हेलमेट या फिर सीट बेल्ट बस हमें लगता है कि हम चलान बचाने के लिए पहन रहे, लेकिन नहीं, आपकी इससे जिंदगी भी बच सकती है। इसलिए अगली बार बाइक या कार लेकर निकले तो ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि अब सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ AI की नजर आप पर है। तो सेफ तरीके से गाड़ी चलाइए, रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, ये भी याद रखिए। स्टे ट्यून्ड।

आज के वक्त में ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा ही नहीं कि जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, हर किसी के पास व्हाट्सएप है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और इंडिया में लगभग 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप के है। दूसरे नंबर पर कौन है पता है? ब्राजील है, जहाँ पर करीब 14 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स है। और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, जहाँ पर लगभग 11 करोड़ से प्लस व्हाट्सएप यूजर्स है। मतलब टॉप पर है दुनिया में इंडिया। 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स अपने इंडिया में है व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब इतना ही बड़ा गैप देखकर लगता है कि इंडिया में व्हाट्सएप ऐप नहीं है, एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। और ये सच है यार, सुबह उठते गुड मॉर्निंग वाला मैसेज हम भेज देते हैं, या कोई अंकल आंटी कोई रिलेटिव हमें भेज देता है। दोपहर में फैमिली ग्रुप में एक वीडियो आता है कि हमारे घर पर आज ये बना है। शाम को सोसाइटी ग्रुप में कोई कंप्लेंट होती है और रात को ऑफिस से आने के बाद एक बार वापस से बॉस का मैसेज आता है कि ये काम पेंडिंग है। मतलब सुबह उठते ही रात सोने तक बस जिंदगी व्हाट्सएप के ऊपर हो चुकी है। शायद इसीलिए इंडिया नंबर वन पर है व्हाट्सएप पर। और आज के वक्त में हमने देखा ना कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक इंसान व्हाट्सएप पर है, चाहे फिर वो स्कूल का होमवर्क हो, क्लास के नोट्स हो, ऑफिस का काम हो, या फिर गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, सब कुछ हम व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। तो इंडिया में व्हाट्सएप सिर्फ ऐप नहीं है, ये हर एक घर का एक फैमिली का मेंबर बन चुका है। इसी वजह से 85 करोड़ प्लस यूजर्स हमारे इंडिया में व्हाट्सएप के है। वैसे आपने व्हाट्सएप कब से यूज करना शुरू किया था बताइए जरा DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड।

0: गया में अदनान और कल 15 जून था, यानी कि स्कूल रीओपन हो गए थे। और कहीं ना कहीं हमें हमारे बचपन के स्कूल याद आ ही जाते हैं जब स्कूल फिर से ओपन होते हैं या फिर 15 जून ये डेट आती है। कल दिन भर ना तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर आज के बच्चों के, जिनके स्कूल के पहले दिन ना तो गेट पर बलून लगाए हुए होते हैं, टीचर स्माइल करते हुए वेलकम करती है, गुलाब के फूल देती है, सेल्फी पॉइंट होते हैं और पेरेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त। और एक हमारा जमाना था भाई, हमारा बचपन, तुम्हें पता है जब 15 जून होते ही हम देर तक सोते थे रोज की तरह, और मम्मी की आवाज आती है, अबे उठ, स्कूल जाना है या नहीं, लवकर उठतो का कसक है, मार खाई से तुला सकाई सकाई। मतलब इस तरीके से हमारी मॉर्निंग होती थी 15 जून की। और अगर हमने गलती से भी कह दिया मम्मी आज पहला दिवस है आज नको ना, भाई इतने स्पीड से चप्पल आती थी ना उधर से सीधे हमारे मुंह के ऊपर, और फिर पहले दिन ही हमें रोते धोते स्कूल भेजा जाता था, क्या ही बोले। और पहले दिन स्कूल की आधी क्लास खाली होती थी, कोई आता ही नहीं था, और वेलकम वो क्या होता है भाई, वेलकम वगैरह कुछ नहीं होता था, सीधा 15 जून को स्कूल आ जाओ, अपना पहला बेंच पकड़ लो या जिस बेंच पर बैठना है और उसी बेंच पर पूरा साल बैठो। ऐसा गुलाब के फूल देना, वेलकम करना, डेकोरेट करना स्कूल, ये मेरे बचपन में नहीं था, बस आज के वक्त में ना तो ऐसा कुछ वेलकम होता है स्कूल में। वैसे एक बात तो होती थी, स्कूल शुरू होने के बाद नए बुक्स की खुशबू एक अलग लेवल पर होती थी और समर वेकेशन खत्म होने का एक अलग ही होता था। वैसे 15 जून की वो सुबह नए बैग, नए शूज और पुराने दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट तो होती ही थी, उसकी बात ही निराली है। और आज भी जब 15 जून आता है ना तो स्कूल का पहला दिन याद आ जाता है। फर्क बस इतना है कि पहले हमारे पैर स्कूल की तरफ जाते थे और आज 15 जून को हमारे पैर ऑफिस की तरफ जाते हैं, यही बस बदल चुका है, बाकी तो कुछ नहीं। सो आज सेकंड डे स्कूल का, बहुत सारे मजे तो हो गए, बस आप अपने यादों में खोते रहिए और सुनते रहिए।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. B.Tech integrated 6 years after SSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Sciences and Engineering, Data Science, Robotics and Artificial Intelligence, Civil Engineering. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171453 or visit MGM Campus N6 Code Chhatrapati Sambhajinagar.

ऑनलाइन स्कैम ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इस वजह से हर कोई कहता है कि लेकिन हम बच के नहीं रहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और भाई ऑल इज वेल कुछ शुरू नहीं है क्योंकि तकरीबन 4 करोड़ का स्कैम हो चुका है अपने शहर में। एक लेडी डॉक्टर है अपने शहर में जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकार बन गई है। हुआ क्या था कि उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक आई जो कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप की थी, तो उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने चेक किया कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ग्रुप में शेयर मार्केट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। तो शुरू में डॉक्टर ने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनको प्रॉफिट होने लगा। इससे उनका उस ग्रुप के ऊपर भरोसा और बढ़ गया। तकरीबन उन्होंने ऐसे 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन जब प्रॉफिट का पैसा बाहर निकालने की बात आई तब स्कैमर्स ने अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर दिए। तब डॉक्टर को समझ आया कि पूरा प्लेटफॉर्म ही फेक है। इसके बाद फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चले गए एंड 24 घंटे में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उन्होंने बचा लिया ट्रांजेक्शन होने से, लेकिन बाकी के पैसे पूरे चले गए उनके। इसी वजह से कहते हर कोई और पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स एड्स पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जो लिंक आपको पता नहीं है उस पर क्लिक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो भाई रीचेक जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी और उस प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड भी चेक करना, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड आपकी नजरों के सामने क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 करोड़ रुपए गए इन मैडम के जिंदगी भर की कमाई है भाइयों और एक झटके में पूरी खाली हो गई। तो जितनी आसान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट लगती है तो उससे डबल खतरा भी उसमें होता है। तो जहां पर आपको प्रॉफिट हद से ज्यादा ही हो रहा है ना, तो उस जगह पर क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ये सच में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: है,
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां।
3: अच्छा तो हम चलते हैं।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा और अब शाम का ये खूबसूरत समय आपके लिए थोड़ी राहत, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया होगा। दिन भर की भागदौड़, काम की जिम्मेदारियां और छोटी बड़ी चुनौतियों के बाद ये वक्त है खुद को थोड़ा सा समय देने का, एक कप चाय के साथ, अपने पसंदीदा गानों के साथ या अपने सपनों के साथ, अपने अपनों के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का। याद रखिए, हर शाम हमें ये मौका देती है कि हम पूरे दिन की थकान को पीछे छोड़कर आने वाले कल के लिए नई उम्मीदें और नए सपने सजा सके। इसीलिए आज जो भी हुआ उसके लिए शुक्रिया कहिए और जो बातें मन के मुताबिक नहीं हुई उन्हें यही छोड़ दीजिए। हमारी यही कामना है कि आपकी ये शाम खुशियों से भरी हो, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और दिल में पॉजिटिविटी हो। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी है, इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, अपने अपनों के साथ समय बिताइए, खुद का भी ख्याल रखिए एंड ऑफ कोर्स आगे बहुत सारी बातें होंगी शो में। आप सुनते रहिए ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जब भी अच्छी सेहत और पारंपरिक भारतीय खान पान की बात होती है तो घी का नाम जरूर आता है। एक समय था जब लोग घी से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन आज कई साइंटिस्ट मानते हैं कि सही मात्रा में घी हमारे भोजन का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है। घी सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। दाल पर घी की कुछ बूंदें हो या गर्मा गर्म रोटी पर लगा हुआ घी, इसका स्वाद और खुशबू खाने को और भी खास बना देते हैं। हालांकि किसी भी चीज की तरह घी का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना जरूरी है। ज्यादा मात्रा में किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन सही नहीं माना जाता, इसलिए अपनी उम्र, जीवन शैली और स्वास्थ्य के अनुसार संतुलित आहार अपनाना सबसे बेहतर तरीका है। हमारे घरों में अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा घी सेहत और स्वाद दोनों के लिए अच्छा होता है, और शायद यही वजह है कि सदियों से घी भारतीय रसोई का अहम हिस्सा बना हुआ है। तो अगली बार जब आपके सामने घी की महकती हुई रोटी, खिचड़ी या दाल आए तो उसके स्वाद के साथ साथ उसकी पारंपरिक अहमियत को भी पहचानिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: 90.8% चाय कड़क है।
1: गाड़ी चलाते वक्त आपको लगता होगा कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, टेक्नोलॉजी की नजर आपके ऊपर एकदम बारीक है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और अपने छत्रपति संभाजी नगर में RTO के नए AI बेस्ड इंटरसेप्टर व्हीकल ने सिर्फ 3 महीने के अंदर तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा गाड़ियां पकड़ ली है। और सबसे ज्यादा एक्शन किस पर हुआ है, यू नो व्हाट, 4-व्हीलर पर नहीं बल्कि 2-व्हीलर पर एक्शन हुआ है। अब ये इंटरसेप्टर गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं होती, ये 500 मीटर दूर से ही आपकी गाड़ी को देख लेती है, नंबर प्लेट रीड कर लेती है, आपने हेलमेट या सीट बेल्ट यूज किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो आपकी फोटो क्लिक होती है और आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है 500 मीटर दूर से ही। मतलब पहले घर वाले कहते थे बेटा संभल कर गाड़ी चलाना और हम इग्नोर कर देते थे, अब टेक्नोलॉजी कह रही है बेटा संभल कर गाड़ी चलाना, अगर इग्नोर किया तो सीधा चलान। वैसे भी हेलमेट या फिर सीट बेल्ट बस हमें लगता है कि हम चलान बचाने के लिए पहन रहे, लेकिन नहीं, आपकी इससे जिंदगी भी बच सकती है। इसलिए अगली बार बाइक या कार लेकर निकले तो ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि अब सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ AI की नजर आप पर है। तो सेफ तरीके से गाड़ी चलाइए, रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, ये भी याद रखिए। स्टे ट्यून।

0: ऑनलाइन स्कैम ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इस वजह से हर कोई कहता है कि लेकिन हम बच के नहीं रहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और भाई ऑल इज वेल, कुछ शुरू नहीं है क्योंकि तकरीबन 4 करोड़ का स्कैम हो चुका है अपने शहर में। एक लेडी डॉक्टर है अपने शहर में जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकार बन गई है। हुआ क्या था कि उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक आए जो कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप की थी, तो उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने चेक किया कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ग्रुप में शेयर मार्केट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। तो शुरू में डॉक्टर ने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनको प्रॉफिट पर प्रॉफिट होने लगा। इससे उनका उस ग्रुप के ऊपर भरोसा और बढ़ गया। तकरीबन उन्होंने ऐसे 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन जब प्रॉफिट का पैसा बाहर निकालने की बात आई तब स्कैमर्स ने अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर दिए। तब डॉक्टर को समझ आया कि पूरा प्लेटफॉर्म ही फेक है। इसके बाद फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चले गए एंड 24 घंटे में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उन्होंने बचा लिया ट्रांजेक्शन होने से। लेकिन बाकी के पैसे पूरे चले गए उनके। इसी वजह से कहते हर कोई और पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स एड्स पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जो लिंक आपको पता नहीं है उस पर क्लिक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो भाई रीचेक जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी और उस प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड भी चेक करना, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड आपकी नजरों के सामने क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 करोड़ रुपए गए इन मैडम के जिंदगी भर की कमाई है भाइयों, और एक झटके में पूरी खाली हो गई। तो जितनी आसान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट लगती है तो उससे डबल खतरा भी उसमें होता है। तो जहां पर आपको प्रॉफिट हद से ज्यादा ही हो रहा है ना, तो उस जगह पर क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ये सच में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधनपूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. BTech Integrated 6 years after SSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Sciences and Engineering, Data Science, Robotics and Artificial Intelligence, Civil Engineering. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Code Chhatrapati Sambhajinagar.

आज के वक्त में ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा ही नहीं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, हर किसी के पास व्हाट्सएप है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और इंडिया में लगभग 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप के है। दूसरे नंबर पर कौन है पता है? ब्राजील है, जहाँ पर करीब 14 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स है। और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, जहाँ पर लगभग 11 करोड़ से प्लस व्हाट्सएप यूजर्स है। मतलब टॉप पर है दुनिया में इंडिया, 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स अपने इंडिया में है व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब इतना ही बड़ा गैप देखकर लगता है कि इंडिया में व्हाट्सएप ऐप नहीं है, एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। और ये सच है यार, सुबह उठते गुड मॉर्निंग वाला मैसेज हम भेज देते हैं या कोई अंकल आंटी कोई रिलेटिव हमें भेज देता है। दोपहर में फैमिली ग्रुप में एक वीडियो आता है कि हमारे घर पर आज ये बना है। शाम को सोसाइटी ग्रुप पे कोई कंप्लेंट होती है और रात को ऑफिस से आने के बाद एक बार वापस से बॉस का मैसेज आता है कि ये काम पेंडिंग है। मतलब सुबह उठते ही रात सोने तक बस जिंदगी व्हाट्सएप के ऊपर हो चुकी है। शायद इसीलिए इंडिया नंबर वन पर है व्हाट्सएप पर। और आज के वक्त में हमने देखा ना कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक इंसान व्हाट्सएप पर है, चाहे फिर वो स्कूल का होमवर्क हो, क्लास के नोट्स हो, ऑफिस का काम हो या फिर गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, सब कुछ हम व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। तो इंडिया में व्हाट्सएप सिर्फ ऐप नहीं है, ये हर एक घर का एक फैमिली मेंबर बन चुका है। इसी वजह से 85 करोड़ प्लस यूजर्स हमारे इंडिया में व्हाट्सएप के है। वैसे आपने व्हाट्सएप कब से यूज करना शुरू किया था बताइए जरा DM के जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

15 जून सुनते ही ना तो हम अपने बचपन में अपने आप चले जाते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और कल 15 जून था यानी कि स्कूल रीओपन हो गए थे और कहीं ना कहीं हमें हमारे बचपन के स्कूल याद आ ही जाते हैं जब स्कूल फिर से ओपन होते या फिर 15 जून ये डेट आती है। कल दिन भर ना तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज वगैरह वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर आज के बच्चों के, जिनके स्कूल के पहले दिन ना तो गेट पर बलून लगाए हुए होते हैं, टीचर स्माइल करते हुए वेलकम करती है, गुलाब के फूल देती है, सेल्फी पॉइंट होते हैं और पेरेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त। और एक हमारा जमाना था भाई, हमारा बचपन, तुम्हें पता है जब 15 जून होते ही हम देर तक सोते थे रोज की तरह और मम्मी की आवाज आती है, आबे उठ, स्कूल जाना है या नहीं, लौकर उठतो का कस का मार खाई से तोला सकाई सकाई, मतलब इस तरीके से हमारी मॉर्निंग होती थी 15 जून की। और अगर हमने गलती से भी कह दिया मम्मी आज पहला दिवस है आज नको ना, भाई इतने स्पीड से चप्पल आती थी ना उधर से सीधे हमारे मुंह के ऊपर और फिर पहले दिन ही हमें रोते धोते स्कूल भेजा जाता था, क्या ही बोले। और पहले दिन स्कूल की आधी क्लास खाली होती थी, कोई आता ही नहीं था। और वेलकम वो क्या होता है भाई, वेलकम वगैरह कुछ नहीं होता था, सीधा 15 जून को स्कूल आ जाओ, अपना पहला बेंच पकड़ लो या जिस बेंच पर बैठना है और उसी बेंच पर पूरा साल बैठो, ऐसा गुलाब के फूल देना, वेलकम करना, डेकोरेट करना स्कूल, ये मेरे बचपन में नहीं था, बस आज के वक्त में ना तो ऐसे कुछ वेलकम होता है स्कूल में। वैसे एक बात तो होती थी, स्कूल शुरू होने के बाद नए बुक्स की खुशबू एक अलग लेवल पर होती थी और समर वेकेशन खत्म होने का एक अलग ही होता था। वैसे 15 जून की वो सुबह नए बैग, नए शूज और पुराने दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट तो होती ही थी, उसकी बात ही निराली है। और आज भी जब 15 जून आता है ना तो स्कूल का पहला दिन याद आ जाता है, फर्क बस इतना है कि पहले हमारे पैर स्कूल की तरफ जाते थे और आज 15 जून को हमारे पैर ऑफिस की तरफ जाते हैं, यही बस बदल चुका है, बाकी तो कुछ नहीं। सो आज सेकंड डे स्कूल का, बहुत सारे मजे तो हो गए, बस आप अपने यादों में खोते रहिए और सुनते रहिए।

0: गाडी पळवतोयस, स्पीड काय?
1: 90.8।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।